0: 7.6
1: शुक्ला गंडकी FM 97.6
2: शुक्ला गंडकी टाइम चेक।
3: यति बेला बिहानको ठीक 9 बज्यो।

0: 你咋叫你来了？
1: 你叫我。
2: What happened?
1: 把我整了点吧。
0: 我不叫你了。Exactly, Danny. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया ही नहीं. बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया. पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया. I'm sorry. Excuse me.

0: त्यसैले दान गरौं, सकेको गरौं सबैले गरौं।
1: अनुरोध शुक्ला हिलेटार शिवालय क्षेत्र संरक्षण समिति, शुक्ला गण्डकी 8 तनहुँ।

0: शाखाको लागि सम्पर्क 9867 13 425।
1: टीभीएस कम्पनी का विभिन्न मोडल का मोटरसाइकल र स्कूटर एंजल राइडर्स प्राली दुलेगौड़ा में। टीभीएस कम्पनी का बाइक र स्कूटर को खरीद बिक्री सब ब्रांड का पार्ट्स र सर्विसिंग गुणस्तरीय भरपर्दो र विश्वासिलो सेवा का लागि सम्झनुहोस् टीभीएस शोरूम एंड सर्विस सेंटर एंजल राइडर्स प्राली शुक्ला गंडकी 4 दुलेगौड़ा प्राइम बैंक संगे शुक्ला गंडकी एफएम को पारीपट्टी। मोबाइल नंबर 9856309982 र 9705620209।
2: TVS साथ छ हाम्रो।